0: ధైర్యం ఉంది. వారి విజయాలు మనకు ప్రేరణగా నిలిచే ఆదర్శాలు.
1: వీరి కృషిని గుర్తించి గౌరవించి భారత ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది పద్మ పురస్కారాలతో సత్కరిస్తుంది. 2026వ సంవత్సరానికి గాను పద్మ పురస్కారాలు అందుకున్న మహిళామణుల విజయ గాథలు, వారి వివరాలు
0: మీకందిస్తున్న పద్మరాగాలు కార్యక్రమంలో మీ అభిమాన ఆకాశవాణి అనంతపురం కేంద్రంలో పద్మరాగాలు తప్పక వినండి. పినాకిని స్త్రీల కార్యక్రమంలో 101.7 MHz పై.
2: ఇప్పుడు విందాం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం.
3: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
4: Community, ek community jab koi problem se joojhte hai, ye ho sake ki ek kharab air quality ho. या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है. कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस. अब इन्वायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ, कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं. अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं. एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है. वी गेट इट इन सुपर मार्केट. तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है. हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके जंगल से लेके कोस्टल एरिया से लेके सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है. पर जो सबसे इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते. हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूँगा. एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे. ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है. तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में. ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज widely discussed in our court, जो हमारा court पर भी discuss किया गया है, that is a precautionary principle. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such, cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment? That need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
3: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज़ है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारा उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है. तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 acres ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है. तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था. उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो. तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए. एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिसपे बस एक 23 acres का जंगल नहीं बच रहा है यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है. ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है. एनवायरमेंटल इज we read in class 8 book that environmental is everything around us. It impacts most the public, everyone. And what is needed is that when we talk about environmental justice, we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly, rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach it should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies.

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविज़न बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शोकॉज, गिविंग शोकॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ तो वो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science

0: livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा

रेशम और कश्मीर का पश्मीना ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और

0: संचालित कर रहा है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Viraje Vishisht Atitigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh Ka Shubharam, Hum Sarvapratham Deep Prajwalan Ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द हैंडलूम फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्री लीडर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल in celebrating the 12th National Handloom Day, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian

0: custodian of our civilizational heritage. Grameen Rozgar Abhiyan, Mahila Sutradhar, or sustainable production ki मंत्रालय अपने पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं. नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स. हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे
2: लाइट आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं.
0: 1.5 lakh weavers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the Future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी, एंश्योरिंग दैट द स्टोरी, स्किल एंड हेरिटेज बिहाइंड ईच वीव reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere एप्रिसिएशन देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
3: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय

0: राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
1: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
0: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें।
1: और अब 12वें राष्ट्रीय
0: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
1: माननीय राष्ट्रपति
0: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारिमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।

0: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
1: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sadi. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari, Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi, Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sadi, and Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
2: Marketing training se hi agle vijeta hai Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hathkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की

0: आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हमारे बुनकरों को सम्मान, पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
3: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Shrimati

0: Draupadi Murmu conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
1: जब 10 साल बाद आता तो 43 लाख और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख आखिर क्यों आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए ये मेरी चिंता है और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को इनको अच्छी रकम मिले ये तो संत कबीर हैं ये हैंडलूम अवार्ड है अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे तो 1,90,000 और कॉटेज में लोग लेकर के जाते लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो चाहे गुजरात हो जिस देश का ले वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते फिर उसकी कीमत देखते हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है 3 एक्सटेंशन है 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है मैं सबों को लेकर के लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को IISTE को एक्सटेंशन को कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो ये मोदी जी की पीड़ा है ये गरीबों का और ये होगा ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दूसरा आपसे निवेदन करता हूं इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं लूम अगर है उनको सूता देंगे उनको डिजाइन देंगे उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से विभाग को एक दें और ये शुरू कर दिया है अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे दूसरा तय किया आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था मुख्य कानून छो था जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया 35 लाख

0: हाय, लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है, बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है, अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीभर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किए हैं, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा, AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिव सागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आप बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा

0: का दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूचे विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की।

0: हैं, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कहती बुली बारबर खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा पिंध लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, फिर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो खे, तो यहीं पे तो शॉप है, हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और सजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर

0: अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सद्भाव और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शहस्यार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: भारती FM 101.3।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन

0: ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के भाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

0: संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
1: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।

0: इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा की आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
2: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. ఇప్పుడు లలిత గీతాలు వింటారు. ముందుగా కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనలు.
4: రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ జాబితా సవరణ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ SIR లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా విడుదలైంది.
5: మీ పేరు ఉందో లేదో వెంటనే తనిఖీ చేసుకోండి.
4: కొత్తగా ఓటర్గా నమోదు కావడానికి Form 6 ఉపయోగించాలి.
5: విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులు NRA నమోదు కోసం Form 6 నింపాలి.
4: మరణించిన, బదిలీ అయిన, అనర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగింపు కోసం మరియు అభ్యంతరాల కోసం Form 7 సబ్మిట్ చేయాలి.
5: వివరాల సవరణ, నివాస మార్పు, EPIC రీప్లేస్మెంట్ లేదా PWD దివ్యాంగుల నమోదు కోసం Form 8 లో దరఖాస్తు చేయాలి.
4: పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను July 31 నుండి August 30, 2026 వరకు సంబంధిత ERO, AERO, BLO కార్యాలయాల్లో సమర్పించవచ్చు.
5: మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటే voters.eci.gov.in లేదా ECINET మొబైల్ యాప్ ను ఉపయోగించండి.
4: జారీ చేయవారు శ్రీ వివేక్ యాదవ్, IAS ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్.

0: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
2: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादो ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन माँ का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी,

10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चले जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो,

ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था, और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता, या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनव की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया, तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निमिष को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, न अपने परिवार में, न ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था।

आपकी स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं, मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया, आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था। उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो

0: संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: अपनी सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।